0: Sir, there is an emergency. A patient is very serious. Accident हुआ है. काफी blood loss.
1: Doctor Ujjav को heal attend it. मुझे जरा घर जाना पड़ेगा.
0: Sir, there is an emergency case of Meher Garewal. Accident है.
1: क्या नाम
0: है? Meher Garewal.
1: मुझे ले चलो.
0: Come.

फिलहाल तो यूँ है कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिन ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते। सूखे से पत्ते हैं एक टहनी पे लगे, किस्मत तो देखो कि झड़ नहीं सकते। फिलहाल तो यूँ है कि कुछ कर नहीं सकते।

0: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
1: सही है सही।
0: मजा ही मजा ब्रो। चलो शुरू करते हैं।

0: कहते हैं किसको तो मुझको गले लगा के देख
1: ऐसे ना तू देख परे दिल क्यों मेरा ब्रेक करे लाल ड्रेस में रानी बिल्कुल रेड वेलवेट का केक लगे
2: तेरे जैसे जाने कितनों के दर्द ना चूर हुए

0: गोर्खा।
1: प्रोप्राइटर प्रेम श्रेष्ठ, मनकामना शपिंग सेन्टर, हरमटारी, गोर्खा। मोबाइल 98410 51227, 98410 51227।